0: Tech Talks
1: में प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते मियोती फाहिपे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख के ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेटे देने मस देबे वायर बिल नो देखी गेंग लारिया वीनुए नेंगी गेंग उले कर नुझे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माफ फाही
3: टेक के दुनिया एंग अलगन में दतरु को गेंग उले रु टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा एंग बड़े ती कुंफनी तक उंगे ना मंदा बादल तक बालानु ला दो कोल मकी कुरम वावरु के कमेनो मे हफ्ता खास टेक के एम फहुगे खबर ता अडवा हालन ती एहुन तेरी तैयार तो एहेम वीमा खबर फरवदा गिनिस्ते टेक के खबर ता अडवा हालमा
4: खबर

0: Tech Talks.
1: मे प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते। मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नुनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबावायरु बिलनु देखिगें लारिया वीनुए नेंगिगें उलेक नुझे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे मा फाहि।
0: Tech Talks.
3: टेक्नोलॉजी के बढ़ती कुंफुनी तकुं अबदु इस्तानी अलगन में के दुवही दिरियुलं फसे हकुर मटका एकी कहाला ईजात तका ए ईजात तकं एकी बदल तक गिन्नमुं मादमा अलगन में निदा फहेलारु टेक्नोलॉजी के दुनियां उफ़मे फोननी कों कहाला ईजात इकमे विस्नेगे मेदुग दतरुं अलगन में टेक्नोलॉजीया साइंस के गुरहें एकी दिमालुं तफातु ईजात तका कुंफुनी तकुं ईजात तक गिन्नमुदा एतके फन्नी बदल तके अलगन में नवनी फेनी आदि आडू इफा, नमावेस मिहार, मेयदु के दत्तरु निम्माला, अंबुरा, अलगन में के दुनिया दान दत्तरु फशन जेहे वकुतु मिवनी जेहिफा। टेक्नोलॉजी या साइंस के अलेगा इंसानों होते मुंगन्ना तफात कुरियनु तका इंसानी आधकादे टेक्नोलॉजी के सबबुंग अन्ना इंगिलाबी आ बदलते के मालूमा तका एम फाउ के खबर तंग होते मा अन्ना हफ्ता कविस अलगन में नायको टेक के दुनिया दत्तरु कुर्मा तैयार वेगिंती पेने कमा उम्मीद करा ಹುರಿ ಹಾಯ್ ಹುಂತಿರಿ ನವಿಸ್ ಬಾಚ ವಿರಿ ವಕುತು ಕುಳಕ್ ನಿದೆ ಅಸ್ಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುಶೇಲಿ ಅಳ್ವನ್ ನಾಫಿಸ್ ಆಬ್ದ ರಶೀದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಹಿಮನಾಫವಾ ಖಬರತಂ ಹುಶೇಲಿ ಮೂಸಾ ರಶ್ವಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂ ಹುಶಾಳಾದಿನಿ ಆಯಿಷತ್ ಫಿನಾ ಫಿರಾಗ್ ಅದಿ ಮಿಸ್ನಾ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಫದ್ದಾಯ ಕುಲವಾಲಿ ಮೂಸಾ ರಶ್ವಾನ್ ಮೀ ದಿವಿಹರಾಜ್ಯ ಗಡುಗೆ ಉಫೆತ್ತುಮೆ

0: అది పిఎస్ఎం న్యూసెస్ బలాలమే.
1: పిఎస్ఎం ఎయా
2: ఐఓఎస్ అది ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ తకుం డౌన్లోడ్ కురవేణ.
0: పిఎస్ఎం ఎయా
2: అవహ ఫోన్ డౌన్లోడ్ కురవ్వా.
3: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
4: ರಾಜೆಗೆ ಉತುರ ದೆಖುನು
3: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
4: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
3: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
4: ಎಂಗ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಯನ್ವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.
5: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করবি, আল মুমিনু লিল মুমিনি কাল বুনিয়ানি ইয়াশুদ্দু বা'দুহু বা'দা, মানে এম মুমিনাকু আনে মুমিনাকং এহি তরিবে ওয়াগে উরিবু মুগা বিনা ইফাদে এই এ বিনাগে এব্যাং আনে বায়া বারা গাদকান দে ফাদান.
6: ಮೇ ತೇರ ಚೆಗಡು ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟ್ ಕದಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
7: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुह राज्य गढ़ के मिकड़ी के मुहिम खबरतों के सुर्खितों के तेरेगा राज्य का मसे के कुरा विदेशी मसे के तिरेंगे तिरें कवैदा खिला फंगुले विदेशी होदा हामस तेरे डीपोर्ट कुरमणि माफावा कम रईसुल जमहूरिया विदार विच नेवा हिलम फदा नेवाला निजाम के बलित का देवे कुली फरवाइन दुड़े हो सेहत कातिबुम कुरवे मसे के फुला को हरदना कुर्मा राज्य के सिही निजाम के मिश्रा बदल कुर्मा मसे के कुर्मा रईसुल जमहूरिया के अंबिकम बलुंगो आला वैफी कौमी कुतुबखाना के गोफित के अतरतु का कायम कुर्म गशो के तेरें हरशिक का कुतुबखाना कायम कुर्म तैयार उमंग अन्नकम फन्ना सकाफता तरीके अभे वजीर विदार विच रशिया और अमेरिका के फरातुन दुनियें नुरक्का मिहार बुड़कम गिनबे कबूल कुराकम सर्वे कुंद कैफी दुहरा जगड़ के रोसत के खबर एक बदू कुरी मरियम फातनान खबर तो के तफसील कुरियदाना रईतुंग मजली हा रईतुंग खास मजली के मेम्बर कं कुरवा फावा मोहम्मद रामिज अवहार वुमा गुड़िकिंग रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज ताउजिया विदार विच सोशल मीडिया का हिस्सा कुरवी पोस्ट का रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज वणी रईतुंग मजली हा रईतुंग खास मजली के मेम्बर कं कुरवा फावा आदि फतर कमा व्यापारी के दायरा कौम खिदम कुरवी गाफ लिफदो मोहम्मद रामिज अवहार वम गहिता मैगा ए आयला ताउजिया विदार विफा रईसुल जमहूरिया वणी मैं गोह के रुसेमा फुसेमगा मरहू मोहम्मद रामिज लहटवा स्वर्ग के दायमी न्यूम मिमवर कुरबुमंग इदि दुआ कुरपाफा मोहम्मद रामिज अवहार वेफावणी उमर फुलुंग हद्या हातर आहारुगा राज्य का मसे के कुरा विदेशी मसे के तेरेंगे तेरें कवैदा खिला फंगुले विदेशी होदा हमस तेरे डीपोर्ट कुरमणी माफा वाकम रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज विदार विच विदेशी के मालूम एक कुर्म सरकार अन्नी खास मसे के तके कुरबम एगोतुन कुरिया गेंदा ऑपरेशन कुरंकी के तेरें राज्य गावले विदेशी के फुरह मालूम एक कुर्म ग मसे के वणी फशाफ खबर गीत तफसील अकबदुल कुरानी शिफना अहमद
1: सोशल मीडिया का हिस्सा कुरवे पोस्ट का रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज विदाड़वे सहकं कशवर कुरेफावा एक्टिव वर्क पर्मिट का मिवगत राज्य का तिबगे मसके कुरा विदेशी मसके तिरंगे तरें नुअिह अंग इंसत मीहुं बयोमेट्रिकली काहुकन देनगने वेगोता दिह इंगली के निशाना साफ फोटो नगा निमिफावा कमा रईस जमहूरिया विदाड़वे मियादद 17 नवंबर 2023 गाहुरी 13 इंसत कमा गवायदा खिलाफ राज्य गावले विदेशी के मसले दाय मिहल्ले गेण मकुरवे मि मसक्कत का अपुरियंग हमस्तो कुरवे न मसक्कत की बाकी तिबि मि हुं होदा राज्य डीपोर्ट कुरुम के खास मसक्कत तक कमा रईस जमहूरिया विदाड़वे राज्य का गवायदा खिलाफ उले विदेशिंग मसला हल कुरुम सरकार वणी मसक्के फट्टवाफ इगु तुंग ऑपरेशन कुरंग के नम का विदेशिंग के मालूमात एक कुरुम के हरकत फेशे मि ऑपरेशन कुरिय गेंदनी काउंसिल तो कावस बायोमेट्रिक्स नेगे इंतजाम त गाम कोकिंग ए मालूमात के अलिका विदेशिंग मै दफ्तर कुलवालान कम दाखिली सलामता बेहे वजीर मिगे कुरिम वणी विदाड़ ऑपरेशन कुरंगी के मैगण मकसद की दिवे राज्य का गवायदा खिलाफ दिरोलमता विदेशी मसक के तिरंगे मसले दायमी हल्लिंग होदुं एवतन राज्य का वजीफा दाकुरा विदेशिंग इंगिली के निशान ने कुमा ए विदेशी मीहा वजीफा दाकुरनी राज्य का हेदिफा हुरे कानूना गवायतो के दशंतो मी ऑपरेशन के तरें यकीन कुरे सरकार के अमाज की देहास हतावीस नहर के अप्रैल माह हमें दायर राज्य का कवायदा खिलाफ उले विदेशिंग के मसले दायमी हल लेके नाऊं एगो तुम कवायदा खिलाफ राज्य का उले मुद्दिया हहास हैसते के वृगिन विदेशिन डिपोर्ट को लाफा वाकम सरकारम विदाड़वे
0: रिपोर्ट तन्नवादिनी इधाम नाइम नेवा हिलम फदा नेवाला निजाम के बलित का देवे कुली फरवाइन दुले हो सिहते गातिबुम कुरवे मसे के फुला को हरदना कुर्म राज्य के सही निजाम के मिश्रा बदल कुर्म मसे के कुर्म रईसुल जमहूरिया के अंबिकम बलुंग साजिदा मोहम्मद को आला वैफी नेवा हिलम की दुनिया के कौम ते के एक गोता राज्य कावेस आम वेफावा नेवाला निजाम के बाई कं एक मनावनी फाहा कुरपाफा
2: World Asthma Day nuata duniya ge neva hilla baya gulegutun amun helun ter kurmata kame kurege nda adhuge munasabutuka aijimich ge faraton mi wani hasa symposium e kurege goswa mi symposium fatawa devi resu jumhuriya ge mikumbulun sajda mohammad ekmana ge wahak fulu gawani am gote ga gina bayaka evis masekata ka annula kurave kame ge gotu gawane walum ge mik kamaki mi bay farataka takuli football ade kamakata ka farua beenu wa kame kam faahaga kurawafa
3: Schools must cultivate deeper awareness Communities must embody stronger support. Family must embrace fuller understanding. And societies must nurture greater compassion. In this regard, we must address prevailing misconceptions surrounding asthma treatment and actively dispel the false perception associated with the use of inhalers.
2: National Respiratory Medicine ge head Dr. Muhammad Ismail ge wahak fulu gawani mi daira ga huri bay gunje hun ta kadi kurmati wada heta faru aga fahaga kurab wafa egotum mujtama tere ga mi deke goy mi wara bod hura ge gotuga mi Dr. wani fahaga kurab wafa.
4: Current GINA recommendations now emphasize that even patients with mild asthma should receive inhaled corticosteroid containing therapy, because severe and potentially fatal exacerbations can occur even apparent mild disease.
2: National Center for Respiratory Medicine ge head nurse clinical nurse Fatmat Lucy ge wahak fulu gawani mi baiya de kola guligen si he daira ya de hameke gamujtama viskure wen muhim kantate ke faha kora bafa.
5: It also noted that many remain undiagnosed, and among those

0: हांगार अंगार दो मिंदुल कुरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दियगट तिरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मिंदम पार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
2: इस्लामी तारखिल तेरे कुरेवे दातुरू
1: मुकद्दस तंतना इस्लामी ताऊसे बिना कुरुंगा मुहिम दौरेंगा दा कुफावा समामवी तंतनु के वाहकता
3: कमुंग बल्किस के अस्तु रसकं उती कोंग सरहद क्यातो देनिगन्नं आर्कियोलॉजिस्टुं वरबुडु समाकम
2: रत बिना कुरिगोता इल्मं हिवरदी पिंतावका इल्मं हित फरादिगे
1: कुरी पोशी
4: कोमे हो मधु है के हिंदुनो आगड़ थेरी हो
1: रिपीट अंगार दोगे मिंदुरु एके जहर आदि बुद्ध दोगेरे आगड़ थेरी हो एंगा सतर्स्ते क साल इस न्यू किलोहर्ट्स मीडियम बेव आदि अट्ठानवे मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: इंतजार कर दो
5: हेलो कोमा मिया दुखी है ने
6: वारा रंगल
7: वारा फक्का हम
8: मिया दु यहाँ रंगले नो
7: वारा बलिको
8: देंगे कहाँ लगोते?
6: हम वारा बेस्टो।
7: दें हाय हाय नो।
5: ऐहुन तेरिंगे हाला हुआल ओलम फिल वाला वाह कदक कालो मा।
6: कौन मैं बुद्ध दो है गिरेगा डो एकार कट सुम मिनट का तिवी राचे के डों केनेस तेरी
8: मिया तो की ही ने।
1: इंहा सातरस्ते का सालिस नोए किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि अट्टिया नोए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड।

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রাওয়াফ হবে, লা তাআতা লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামা আত-তাআতু ফিল মারুফ, মানে আল্লাহং উরদেবে এভস কামেগা মিহাকা কিয়ামাম বুমেন নুবে হামাকাশওয়ারুন কিয়ামাম বুমবানি হিওকাং কামগে।
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹಾತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತೀಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು